0: आलो पर नारे
1: पी आलो
0: ये रे को थोड़ा नानी
1: आ गुंडे कमजोर है
0: बा गुंडे मारते फोन ना मुरे पी
1: रिपुला दिस इज बाबा बम से मारा पर दिस तो फार
0: प्रोविंस ऐसे फार अगर ना फार रे को कमुरे
1: ना दा गुना फार हम को मा इको मा वंगा पे ने इको को गुटाउं दी
0: कोनो को शुरू को पंबा टिपे इतने से को बड़ा कोसंडो
1: कुपेरा कोसंडो को मा विटोरी ना सिंड्री पानु पंबा पानु उन्हें सब इतना अंबुया आपा ए मंगवाना फूड ए मुझे गुबेरा जोंगा टी मिस्टर बतेरा ए मुझे सोने वाके नो चेची मुझे फूड वाटु पेटी को गुटाउं दी हम कैमरा
0: मौका नुआशानु
1: जोंगा दिन को मा विटोरो जिपिले बो फूड सेमाना ए लोए नो कंबिसा माइ डिविजन लोए ए लोए नो कुनोआना di albeto agwenda de ya gwenda marko agwenda eh ndenda kuma migo vinzishaneria dumba kutumiwa eh mana rosa starlos eh mana na bera juang terma beto anten eh rasiko vasco maenda eh ndenda kuna diliba u dostrej eh kuna ese haul kundizwa ngwa zino lese ngwa pine bopis mana msemara
0: ndatenda mo wane mangwana ni yakanaka
1: matabasa kwa video
0: atenda.